ओट पराद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ो, तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के बोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सो कहो टल गुर सेविया, दर्शन परसे है गुरु के। जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों झटिया है, तुझे डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया है, सज्जन सचा पातशाह। सिर साहां दे सहाओ, जिस पास बैठे हाँ सो ही है। सबना दा बिसाहो।

प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चेत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चेत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत। रहाओ मन बलास पाए साहेब के अचार्य देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बलास पाए साहेब के अचार्य देख बढ़ाई हर सिमर।

0: कथ कथ कथि कोटि कोट कोट
1: दीदा दिलै दे थक पाहे जुग जुगंतर खाहि खाहे
0: हुक्मे हुक्म चलाहे राहु नानक बिगसे बेपरवाह
1: साचा साहेब साच नाए पाख्या पाओ अपार
0: अखह मंगह देह दे दात करे दातार
1: फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार
0: मुह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार
1: अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार
0: करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार
1: नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार
0: थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए
1: जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान
0: गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए
1: गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई
0: गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई
1: जे हम जाना आखा नाही कहना कथन न जाई
0: गुरायक दे बिजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई
1: तीर

0: गावन जते सते संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पंडित खीसर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे है मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
0: गावे जोध महाबल सूरा गावे खाने चारे
1: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
0: से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे पग दरसाले
1: और केते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
1: हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
0: रंगी रंगी पाती कर कर जनसी

0: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे
1: पालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शांत व प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अकल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता।

0: अतिशय अतिशय अदृश्य कृष्य भगवती संत वै प्रसाद कथते
1: हे आशय देसे गया पंच भेसे गया अग्न कर्म गया पंच परमे
0: के
1: राजन प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण के सरबाया वर्ण
0: जगदंग कृति है के शतरंग क्षत्रि है।

0: केसरबत्र माने है, केसरबत्र दाने है, केसरबत्र गाउण है, केसरबत्र पौण है,
1: केसरबत्र देश है, केसरबत्र पेश है, केसरबत्र राज है, केसरबत्र साज है,
0: केसरबत्र दीन है, केसरबत्र लीन है, केसरबत्र जाहु, केसरबत्र पाहु,
1: केसरबत्र देश है, केसरबत्र पेश है, केसरबत्र काल है, केसरबत्र पाल है,
0: केसरबत्र हंता, केसरबत्र गंता, केसरबत्र पेखी, केसरबत्र पेखी,
1: केसरबत्र काज है, केसरबत्र राज है, केसरबत्र सुख है, केसरबत्र भूख है,
0: केसरबत्र त्राण है, केसरबत्र प्राण है, केसरबत्र देश है, केसरबत्र पेश है,
1: केसरबत्र मान्य है, सदैव प्रधानी है, केसरबत्र चापी है, केसरबत्र थापी है,
0: केसरबत्र पान है।

0: निरुक्त स्वरूप है, त्रमुक्त विभूत है, प्रयुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है,
1: स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसा

0: भक्त स्वरूप है, अचिज है, अछूत है, के नरकन पर नाश है, पृथ्वल पर वास है,
1: निरुक्त प्रवाह है, सदै मंग सदा है, बभुक्त स्वरूप है, परयुक्त अनूप है,
0: सदा है, विपुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है।

0: सर्वगुमर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: करुणाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मांड से है, खलखंड से है, परते पर है, करुणाकर है,
1: अजपा जप थप थप कृता कृता मृत मृत है,
0: अमृत है, करुणाकृत है, कृता कृत है, धन्य।

0: रंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: कलंकर्ता है, सर्वा करता है, कर्ता कर है, अर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जस है, भुजंग पयात छंद
1: नमो सूर सूर्य नमो।

0: नमस्तल पर नामे समस्तल पर नासे अगंजल नामे समस्तल निवासे
1: कामंग पे पुते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग पर नासी सो धर्मंग पे पुते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग पर नासी करी मनोकृंदा समस्तल निवासी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते श्याम पंच सुगम।

0: पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा जवन काल योगी सब की यो बेदराय ब्रह्मा ज्योतियो
1: सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जवन काल सब जगत बनायो देव दया जश्न उपजायो
1: अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तुसी को हमारी

0: जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बुझ उचार निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संभ
1: चारत वेद जाको पेव न पावत वेद

पढ़ पढ़ कटी लदी पढ़ पढ़ पर ये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई पढ़ पढ़ कटी खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास न पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिख एक गल हो में चखना चाख महला पहला।

कुर पाटे एक ना वास मसाणी, जिनके बंके करी ना आया तिन क्यों रहन विहानी। आपे करे कराए करता किसनो वाग सुनाई है, दुख सुख तेरे भाणे होवे किस थाए जाए रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद वासा काफी महला पहला घर अठवां अष्टपदियां। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सुते हो चलिया बन जारा, रहाओ नीत नीत कर बांधी है जे रहना होई। पिंड पवै जियो चल सी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है उसी सोई। तुम रोगे उसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिटो पाइयो तुम कूड़ कमावो। ओ ना सुने कंत ही तुम लोग सुनावो, जिसते सुता नानका जागाए सोई। जे कर बुझे अपना त नींद ना होई, जे चलदा लै चलिया किसम पै नाले। ता तन संचय देख कै बज बूझ हो बिचारे, वणज करो मकसूद लै मत पछो तावो। अवगुण छोड़ गुण करो ऐसा तत् परावो। धर्म पूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावो, ता व्यापारी जानिया लाह लै जावो। कर्म होए सतगुरु मिलै।

आसास करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होई। आसा वे सुते कई लोकी, आसा वे सुते कई लोई, जो जागै जगावै सोई, सतगुर नाम बुझाया बिना वै भुख न जाई। नामे तृष्णा अगन बुझे, नाम मिलै तिसर रजाई राव, कल कीर्त शब्द पछाण, यह भगत चुकै अभिमान, सतगुर सेवा हो वै प्रवान, जिने आसा कीती तिसनो जान, तिसका की दीजा जे शब्द सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाए, सिर दीजै आप गुवाए, हुक्मै बूझै सदा सुख पाए, आप करै तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप भुलावे आपे मारे पाए, सच्चे साहिब सच समाए, सच्चा साहिब सच्ची है वाणी, गुरमुख जुग जुग राख वखाणी, मनमुख मोह परम भुलाणी, बिना वै सब फिरे बे भौ राणी, तीन भवन में एका माया, मूर्ख पड़ पड़ दूजा भौ दड़ाया, वो कर्म कमावै दुख सुभाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार अंदन भोग गया, मैं मार सदा सहज आनंद कृपा।

देव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन परंपरा गुरुदेव करता स पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद युग जुग गुरुदेव मंत्र जप हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम ओढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा ए श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजमा श्लोक इक्यों

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई
1: मनु हा नाम तेरे संग सहाय
0: जय महाप्यान दूत जम दल
1: केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल हो वह अत पारी
1: हर को नाम खनमाए अधारे
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख कनेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंध न परे
1: हर का नाम जपत निस्तारे
0: अनक माया रंग तिख न बुझावे
1: हर का नाम जपत अकावे
0: जेह मार्ग एह जात अकेला
1: हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
1: नानक गुरमुख परमगत पाइए
0: छूटत नहीं कोट लख बाही
1: नाम जपत पार पराही
0: अनक विगंजय आए संघार
1: हर का नाम तत्काल उधारे
0: अनक जोन जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हाँ मैला मल कबहु न तोवे
1: हर का नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जप हो मन रंग
1: नानक पाइए साध के संग
0: जे मार के गने जाहे न कोसा
1: हर का नाम हुआ संग तोसा
0: जे पैंडे मह अंध गुवारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंतर को न से अनु
1: हर का नाम ते नाल पछानु
0: जय महाप्यान तप्त बो काम
1: दे हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जहां त्रिखा मन तुझिया करखे
1: दे नानक हर हर अमृत बरखे
0: भक्त जन की बर्तन नाम
1: संत जन के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर खोद साधक मात
0: हर

0: को मुक्त जुगत
1: हर के नाम जन को तृप्त भोगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत का परे न पंग
0: हर का नाम जन की वडियाई
1: हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जपत कस नाए वियोग
0: जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के मालिक जीना
1: हर तन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन के ओट सतानी
1: हर प्रताप जन अवर ना जानी
0: ओत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाद नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त प्रकट नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संग कीते तरे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम तेन हर हर गुण गाम
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिद बसे
1: संत प्रताप दुर्सा बनासे
0: संत का संग बड़ भागी पाईए
1: सा

0: के बल बल जसा,
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान,
0: साथ संग जाका मिटे अपमान,
1: आपस को जो जाने नीचा,
0: सो गनिये सब ते ऊंचा,
1: जाका मन होए सगल किरीना,
0: हर हर नाम तेन कट कट चीना,
1: मन अपने ते बुरा मिटाना,
0: बेखे सगर श्रेष्ठ साधना,
1: सुख दुख जन समृष्टि तक,
0: नानक पाप नहीं लिपा,
1: निर्तन को तन तेरो ना,
0: निथामे को ना तेरा था,
1: निमाने को प्रभु तेरो मान,
0: सगल कटा को देवो दान,
1: कर्ण करावन हार स्वामी,
0: सगल कटा के अंतर जामी,
1: अपनी गत मित जानो आपे,
0: आपन संग आप प्रभ राते,
1: तुमरी उस्त तुम ते होए,
0: नानक वर्ण जान सकोए,
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: साथ संग दुर्मत मल हिरिया,
1: सगल उद्यम में उद्यम पला,
0: हर का नाम जपो जी सदा,
1: सगल वाणी में अमृत वाणी,
0: हर को जसन रसन।

0: एक बासन कल्ब खोट गवावे
1: एक पीना दे दस पीहिरले
0: दो मूड़ा कोह कहां करे
1: जिस ठाकुर स्यो नाही चारा
0: जाको की जे सद नाम सकारा
1: जाके मन लागा प्रभ मीठा
0: सर्व सुख ताहू मन बूठा
1: जिस जाने अपना हुक्म मनाया
0: सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगनत सापनी दे रास
0: खात पीत बाते अंध अलास
1: अपनी अमान कश बाहर साले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोबे
0: और उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी बस्ती से आगे रखे
0: प्रभ की आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: अनेक भांत माया के
0: हेत सारवर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे
0: ओ बिन से ओ मन पछतावे
1: जो दी

0: जेहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: ठाकर को रख मन माहे
0: जेहे प्रसाद सुगंध तन लाभ है
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जेहे प्रसाद बसे सुख मंदर
1: जिसे त्याए सदा मन अंदर
0: जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो ते सरसना
0: जेहे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्या ये त्या मन योग
0: जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: जिसे त्या कथ अवर लबावे
0: जेहे प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: मन आठ पैर ताका जस का विजय
0: जेहे प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुख ताको जस रसन पखाने
0: जेहे प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्या ये केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जब दरगे मान पाव है
1: नानक पासे ती कर जावे
0: जेहे प्रसाद रो कंचन देही
1: लिबला वो तिसराम स्नेही
0: जेहे प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जेहे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सानी पर ठाकर प्रभु ताके
0: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
1: मन साह सा सिमरो प्रभु ऊचे
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताके भक्त करे
0: जे प्रसाद भूखन पहरी जय
1: मन ते सिमरत क्यों आल सकी जय
0: जे प्रसाद असब हस्त असवारी
1: मन से प्रभु को कबु नाम बसारी
0: जे प्रसाद बाग मिलक तन
1: राख प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बणत बनाई
1: ऊट से बैठ सा तिसे त्याई
0: तिसे त्याई जो एक अलख है
1: हुआ नानक तेरी रखे
0: जे प्रसाद करे पुन बोदान
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
0: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: जिस प्रभु को सास सास चतारी
0: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा
0: जे प्रसाद ते नीकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: जे प्रसाद तेरी पात्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जे प्रसाद सुने करनाद
1: जे प्रसाद पेखे बिस्माद
0: जे प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद पूर्ण फले
0: जे प्रसाद परम गत पाव है
1: जे प्रसाद सुख सहज समाहे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन
0: जे प्रसाद तू प्रकट संसार
1: जिस प्रभु को मूल ना मनो बसार
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूर्त ताको जाग
0: जे प्रसाद

0: साध के संग में खूजल होत,
1: साध संग मल सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग पर टेसो ज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होतन बेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन परानी,
1: नानक साध की शोभा परम माए समान,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर फुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमरस पूंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कथु तावे,
1: साध संग अस्तर मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन समीत,
1: साधु के संग महाप्रीत,
0: साध संग किस्यो नहीं बैर,
1: साध के संग न बिगा पैर,
0: साध के संग न ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंद,
0: साध के संग न ही कहो ताप,
1: साध के संग तजे सब
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आए,
0: साध के संग ना कबहू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्त अगोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करबान,
0: साध के संग सब कुल उधारे,
1: साध संग साजन मीत कटाम निस्तारे,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: जे तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सो बासर देवा,
0: साधु के संग पाप लायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं किश काल,
1: दर्शन पेट तो होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सोहेला,
1: साध संग विसरत हर मिला,
0: जो इच्छे सो ही फल पावे,
1: साध के संग न व्यर्था जावे,
0: साध पार ब्रह्म साध साध रिद बसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मन ते बिसरे,
1: साध संग सर्प निस्तरे,
0: साध के संग लगे परम मीठा,
1: साधु के संग कटकट लीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पे हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पे टे संजोग,
0: साध की महिमा भेद न जाने,
1: जेता सुने तेता बख्याने,
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नहीं अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
1: साध की शोभा मुझ ते

0: के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊचते उच्चा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पिया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा व्रत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह
1: ब्रह्म ज्ञानी परपकार अमाह
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले ताबत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अबुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बताता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी

0: क्रोध विकराल
1: कबू सर्व की हो तरवाल
0: कबू होए बह बड़ राजा
1: कबू पखारी नीच का साजा
0: कबू अपकी रत में आवे
1: कबू पला पला कहावे
0: जो प्रभ रखे तिब ही रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबू होए पंडित करे बख्यान
1: कबू मोहन तारी लावे ध्यान
0: कबू तटती रत इशना
1: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनक जोन पर में परमिया
0: नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे
1: जियो पर पावे तिमे नचावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर ना कोए
0: कबू साध संगत एह पावे
1: उस स्थान ते बार न आवे
0: अंतर होए ज्ञान परगास
1: उस स्थान का नहीं बनास
0: मन ता नाम रते इक रंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
0: ज्यो जल में जल आए खटाना
1: ज्यो ज्योति संग ज्योत समाना
0: मिट गए गबन पाए विश्राम
1: नानक प्रभु के

0: के कुछ नाई हाथ है।
1: इसका हुक्म दबोज सुख होए,
0: इसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
0: नानक बिगड़ना लागे कोए,
1: उस्तत मन में कारण रंकार,
0: कर मन मेरे सत बिहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहला कर ले जियो,
1: नैनो पेख ठाकुर का रंग,
0: साथ संग मिट से सब संग,
1: चरण चलो मर गोविंद,
0: मिटिए पाप जपिए हर बिंद,
1: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: हर दरगे नानक उजल मथा,
1: बड भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाए,
1: राम नाम जो करहे विचार,
0: से तन बंत गनी संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानू ते सुखी,
1: एको एक एक पिछाने,
0: एत उत कियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिसका मन मन मान्या,
0: नानक तिने निरंजन जानिया,
1: गुर प्रसाद अपन आप सुजे,
0: जिसकी जानू तृष्णा बुझे,
1: साध संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग ते हर जन रहत,
1: अनदिन कीर्तन केवल बखान,
0: गृहस्थ में सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आसा,
0: जिसकी कटिए जम की फासा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक तिसे न लागे दूख,
1: जिसको हरपम मन चित आवे,
0: सो संत सहेला नहीं डलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवे को कहते डरे,
1: जैसा सात है सा दृष्टाया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया,
0: गुर प्रसाद सब बुझिया,
1: जब देखो तब सब किश मूल,
0: नानक सो सुखम सोई अस्तूल,
1: न किश जन्म न किश मरे,
0: आपन चलत आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनक जुगत रच थाप थाप,
1: अबनासी नाही किश खंड,
0: धारण तार नियो ब्रह्मांड,
1: अलख अपेब पुरख प्रताप,
0: आप जपायता नानक जाप,
1: जिन प्रभ जाता सो शोभावंत,
0: सगल संसार उदरे तन मंत्र,
1: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण,
0: प्रभ के सेवक दुख बसान,
1: आपे मेल ले कृपाल,
0: गुर का शब्द पै निहाल,
1: उनकी सेवा सोई लागे,
0: जिसनु कृपा करे बटपाके,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तिन पुर को उत्तम कर मान,
1: जो किश करे सो प्रभ के रंग,
0: सदा सदा बसे हर संग,
1: सहज सुपाए होवे सोए,
0: करने हार पछाणे

0: दुख ते नासे,
1: तप्त माहे ठांड बरता,
0: अंध पिया दुख नाठे पाए,
1: जन्म मरण के मिटे अंधे,
0: साधु के पूर्ण पदेसे,
1: पहुचुका निरपौ होय बसे,
0: सगल ब्याद मन तेखे नसे,
1: जिसका सातन कृपा तारी,
0: सा संग जप नाम मराई,
1: हित पाई चुके प्रभु गवन,
0: सुन नानक हर हर जा सरबण,
1: निर्गुण आप सरगुण पियो ही,
0: करा तार दिन सगली मोए,
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए,
0: अपनी कीमत आपे पाए,
1: हर बिन दूजा नाही कोई,
0: सार नरंतर एको सोए,
1: ओत पोत रभ्या रूप रंग,
0: वै प्रगास साध के संग,
1: रच रचना अपनी कल तारी,
0: नानक बार नानक।

0: साधक बिरला राखे
1: सो क्यों बिसरे जे बिकते कांडे
0: जन्म जन्म का टूटा गांडे
1: गुर पूरे तत एह बुझाया
0: परा भी अपना नानक जनते आया
1: साजन संत करो हे काम
0: आंते आग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पाव
0: आप जपो अवरा नाम जपावो
1: भक्त पाए तरिय संसार
0: बिन भक्ति तन होसी सार
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम
0: मूर्त जात पाए बिश्राम
1: सगल दुख का हो बतनास
0: नानक नाम जपो गुणता।

0: एक स्कट मां
1: अनकर अंग नाना दृष्टाय
0: नौ निधि अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनत तैनाद
1: कहना जाई अचरज पवास
0: तिन देखिया जिसे आप दिखाए
1: नानक जनन सोजी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: काट काट व्याप रिहा भगवान
0: कारण माया आकाश पया
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: मन तिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी बह संतर माही
1: चार कुंड दे तिसे
0: इसते पिन नहीं कोठा
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमृत में देख
1: सस्यर सूर नखत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोला
1: आपन डोलना कबू डोले
0: सर्व कला कर खेल खेल
1: मोलना पाइये गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: तारियो स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन में इहो बसास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब तर
0: संत जना सुने शुभ बचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी यह रहत
1: सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मन
1: कारण करावन हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोहि
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्रभ ते सगली उत्पत
0: इस भावे ता करे विस्तार
1: इस भावे ता एकंकार
0: अनकला लखी न जाए
1: इस भावे तिस लय मनाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आपे आप परपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक जिन आप बजाए
0: सर भूत आप बरतारा
1: सर्व नैन आप एकण हारा
0: सगल समग्री जा का तना
1: आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बना
1: आज्ञाकारी किन्नी माया
0: सब के मद अलिप्त रहे
1: जो किस कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे

0: ही सब साथ
1: पोत पोत अपन संग राज
0: ताकि गतमित कही न जाए
1: दूसर होए तो सोजी पाए
0: तिसका किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने तिस सदा सुख होए
1: आप मलाए लै प्रभ सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मोक्ष सरिदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन का एह स्वभाव
1: जन के संग चित आवे नाम
0: आप मुक्त मुक्त

0: दयाल
1: दुखपन जन पूर्ण कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का हे आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल ए रतन
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप तरे लोक के निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद बाजे
1: सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे
0: प्रगटे कपाल महांत के माथे
1: नानक उदरे तिनके साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए
1: कर कृपा प्रभ
0: मिट गए बैर पै सब रेन
1: अमृत नाम सात संग लैन
0: सो प्रसन्न पै गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेव की सेव
0: आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नासन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु तारी
1: नानक ने वेखे प हमारे
0: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होतन दान
0: सर्व इच्छा ता की पूर्ण हो
1: वरदान पुरख पाठ सब
0: सब ते उच पाए स्थान
1: न होवे अमन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नब निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मास सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन के मुख भने
1: गुरु नानक नाम

तीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु पर घास सकल काल का किया आत्मा जब

0: जगत बन देव दैत जसन पजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमार नमस्कार ते सही को मारी सकल पर जन आप सवारी शिव गण को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद दियो
1: कट कट के अंत

कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शंकर प्राचीनत आप अपनी बुद्ध है जीती बनत भिन्न भिन्न तू तीति तुमरा रखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंग पेहो राव के अंड जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहोरत कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट प्यो